0: नहीं नहीं नहीं रक्षति दुःखकरणी नहीं नहीं रक्षति दुःखकरणी
1: Thank you.